रानी वाला पलंग खाली है। थोड़ा समा राजे ने उड़ीक की थी, पर जिस वेले राणी नू राजे ने नहीं तकिया, तो भाई साहब जी लिखते हैं राजे दे मन च बड़ी है। अद्धी रात दा समय राणी किधर चली, राजा उठिया, महल दे अंदर राणी नू लभण लग गए, सारे कमरे वेखे और राणी दिस ना भी मन विच वरत गई है। तो प्यारी सास संगत, राजे दे मन विच राणी दे मतलब चंगे ख्याल भी आउन लगे, मंदे भी आउन लगे। राणी दा मेरे नाल प्यार तो बड़ा है, पर अधी राती राणी दा महल विचों गैर हाजिर होना, ए तो मैनू धोखा दिंदी। इन्हां सोचां ते दलीलां राजा अपने पलंग ते बैठा लेट गया, नींद आ गई। दिन चढ़िया, जो राजे ने अखां खोलियां की तकिया, राणी अपने पलंग ते लेटी हुई। राजे ने आवाज दिती, राणीए उठ। राणी उठी, राजन हुक्म करो। राजे ने पहला सवाल कीता राणी ते, ए राणीए सच दस तू राती किथे गई से। अधी रात तू गैर हाजिर सी, किथे गई सी। राणी सोचन लगी, जे मैं सच दसदी हां तां जिथे मैं रोज जांदी हां, हो सकदा है राजा रुकावट पा दे। तो राणी रोज किथे जांदी सी? आई साहब जी लिखदे, साध संगत मिल गाम दे, राती जाए सुने गुरु। रोज सत्संग भी जांदी, महापुरुषां दी संगत रात नू जांदी सी। रोज डेली नितनेम बनिया होया सी, चाहे मीह होवे चाहे हनेरी, कैसा भी वैदर क्यों ना होवे, राणी तारा रोज नितनेम नाल जांदी सी। सोचिया जी सच बोलदी है तो हो सकदा है राजा सत्संग तू रोक देवे, पर मेरे ते प्राणा दा आधार है सत्संग, मेरे जीवन दा निशाना है गुरु दी बाणी। रोटी मिले चाहे ना मिले, पर मैं सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता, ए प्यार दी निशानी है, ए प्यार है। राणी सोच, राजे ने फिर किया, राणी बोल तू राते किथे गई।

मर्दाना काही चीर फिरदा रहा। और इस वस्तु के लैण वाला कोई गाहक नहीं है। हार के चौरस के मर्दाना खड़ा हो गया। सोच रहा है मार्क ने उठ के एडी वड्डी दात बख्शी, हर्ष के लैण वाला सोच कौन लगे जाए। मरदाने ने सामने तक आया एक अरायण बैठी जिसकी टोकरी गाजरा मूलियां। मरदाने ने सोचा चलो मैं इस अरायण को दे देंगे, कुछ खाण में दे देंगे, खा के अपने पेट में चुपका देते, भुख का दुख दूर कर। मरदाना अरैण के कोल आके खड़ो गया, मुठ खोली देके आ माई आ लवेगी, अरैण ने तकिया ते सिर फिर मैं इस पत्थर नू की कर रहा। पर ख्याल है तो पत्थर पर चमकदा बड़ा, चलो ले लेनी है मेरे बच्चे पे खेलन। बच्चों की खुशी वास्ते माता पिता कितनी कोशिश कर, बच्चों खिलौने लेके देते हैं, पैसे देते हैं, मठियाइयां देते हैं, साडे बच्चे खुश हो। बच्चों की खुशी वास्ते माता पिता की कितनी कुर्बानी है। हेलो बच्चे हैं जो वड्डे होके माता पिता की खुशी है। माता पिता ने बच्चों की खुशी वास्ते केडी वड्डी कालना कर, पर वो बच्चा धन है जो माता पिता की करते। बाबा आनंद सिंह जी महाराज पूर्व महापुरुष अपनी पवित्र पावन रचना को वचन कर दे कि जिस बच्चे ने माता पिता की प्रसन्नता ले ली है उस उत्ते रब की सदा ही प्रसन्न, सदा ही प्रसन्न। क्योंकि माता पिता की बड़ी कहानी तयों साहबा ने बाणी की लिखा गुरुदेव माता गुरुदेव। अरण्य तक है तो पत्थर पर चमकना बड़ा है, लै लेनी है मेरे बच्चे पेट के लिए। मरदाने ने कहा माई इसके बदले की दे देंगी। तो कह रही सात संगत अरण ने टोकरी में एक मूली चुकी। मरदाना बड़ा हैरान है, मालिक ने तो किया मरदानिया बड़ी वड्डी दात है, पहला तो लैण वाला कोई गाहक नहीं मिले, जे मिले तो मुल की पिया एक मुल। मरदाने ने कहा माई एक मूली छोड़ी है तू दो मूलियां तो दे। अरैण हस के मैं तो एक मूली भी तेरे उत्ते एहसान करके पी दी,
परदेसी जापता है, दूरों आया जापता है, दूर का पाबी जापता है, क्योंकि तेरे पैरों की धूल पर फिटे भी क्यों नहीं। एक बोली भी ऐसा मरदाना अगे अगे हलवाई की दुकान, हलवाई ने तरह तरह दिया मठियाइया ताजिया तैयार करके सोने चांदी के वर्त लगा के थाला रखी, ताजिया मठियाइया वाल करके भुखे मरदाने के मूह च पानी पाया, मतलब हलवाई नू दे देती गाकर तीर पहाड़ तो बड़ी पर मरदाना लंघदा लंघदा हलवाई दे कोल क्यों जी आ लोगे हलवाई ने तकिया ते सिर फेरे मैं इसनू की करन पर क्या लाया अद्धी शताकी का वट्टा गुम हो गया वो थां ते रख लिया कर क्योंकि उसने पत्थर दे ही वट्टे कर दिए जिस तरह आजकल लोहे दे वट्टे हैं कई तरह के साधन बन गए हैं हूं तक और उस वेले पत्थर दे हूं भी कदे सुल्तानपुर तुसी जा जिथे मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी ने मोदी खाना चलाए दुकान चलाई तकड़ी तो वो वट्टे हूं भी पे हलवाई भी पके है तो पत्थर पर चमकदा बड़ा मेरा भी इतनी टाकी का वट्टा गुम हो गया ओदी थां ते रख लवांगा हलवाई कह लगा मैं नहीं बरदानी ने कहा ये बदले फिर मिठाई कि नहीं दोगे हलवाई ने कहा इन पाओ मिठाई बरदाने ने कहा जी पा थोड़ी है कोई ज्यादा दो क्योंकि मैं कला नहीं मेरे नाल मेरा मालिक मैं उन्हें भुखा तो नहीं कहना पर तीन दिन हो गए हैं रोटी उन्हें भी नहीं खाती पता नहीं केड़े आहार नालों जी एक शेर मठियाई दर दी हलवाई ने क्या इस तू ज्यादा नहीं कहनी मरदाना निराश होके वापस अगों कोई भला पुरुष मिले उदास मरदाने वाल तक के पूछा जी हो जी तुसी उदास क्यों हो मरदाने ने सारी विख्या दी मालक ने टुट के दात बख्शी है कोई लैण वाला नहीं मिलता किसी नू दिखानी सी मरदाने ने क्या दिखाई किनू अरैल होर किसू हलवाई इन्हें क्या खिमा कर जी थोड़े को वस्तु है ये अरैणा से हलवाइया के लैण वाली मरदाने ने कहा फिर कौन लेगा इस गुरमुख ने कहा फलां बाजार में चले जाओ उत्थे एक बड़ी सुंदर दुकान उस दुकान के अंदर शीशे के चौकियों के अंदर मैं इन कई लाल लाल गीटियां पईया तकी उत्थे ले जाओ एदा मुल उत्थे मरदाना थोड़ा जिहा खुश हो गया वह दुकान किसकी है जौरी उस जौरी का नाम की है जी उसका नाम है सालस है मरदाना पुछता पुछा सालसराय जौरी की दुकान पे आके चले दुकान बड़ी सुंदर बड़ा सुंदर कारपेट बिछा हुआ अंदरों सेंट दिया खुशबू आ रही है मरदाने ने जिस वेले दुकान के अंदर पैर पाया साल सराय ने तकिया कोई आया बड़े अदब नाल उठ के हथ जोड़ के आओ ही आया नू इत्थे बैठ
बरदाने में सोनी चेयर पे बिठा, कुर्सी पे बिठा। बरदाना बड़ा खुश, सोचने लगा माना लेना देना था एक पासे ने, पर बोलिया बड़ा मिठा है, मिठा बोलना भी एक जादू, मिठा बोलना भी इंसानियत, इंसान हो के कौड़ा बोलता है ओदा बोलना परवान, ऐसा बचन कदे भी ना करिए जिदे नाल किसी ने मन में दुख। भाई गुरुदास जी ने भी लिखा है सिख का जीवन पिछले राती जागण, नाम दान इशनान दिलाए फिर मिठा बोलन निव चलन हाथों देके भला। प्रधाना बड़ा खुश, मिठा बोले, प्रधाने ने मुठ खोली, शाह जी आ लोगे? सास राय ने क्या जरा ठहर, नौकर नु बुलाया, बच्चा धरका जी मालिक, अंदर चौकी ले आंदी, एदे चिट्टा रुमाल पापा जी। सास राय ने मरदाने वल तकिया ते किया जी ये कोई कौड़िया नहीं जो मिट्टी कट्टे विच रोलोगे, ये लाल है इनू इत्थे रखो। मरदाने ने रख, साल सराय ने परख वाली अखना, लाल नू तकिया फिर लाल वाल वेदिया वेदिया साल सराय का सिर चुक गया, सिर चुके नौकर वाल तकिया, बेटा धरका जी मालिक लिया एक सौ एक रुपये की थैली लिया। साल सराय ने लाल दे के रख के मत्था टेकिया, लाल ते एक सौ एक रुपया साल सराय ने मरदाने की चोड़ी पा। मरदाना बहुत हैरान हो गया, सोचने लगा कदे एक सौ एक रुपये की थैली वाल तकदा, कदे साल सराय के मुंह वाल वेखदा है, रह नहीं सकिया। मरदाना कहने लगा शाह जी गुस्ताखी माफ करे जे, भला कोई नशा पानी तो नहीं खाते पीते आखो श्री वाले। साल सराय ने कहा कोई नशा, प्रधाना कहने लगा फिर आके किता जी, नाले लाल भी नहीं लिया नाले एक सौ एक रुपया हो। साल सराय के नेत्र पर उस्तादा दे वारे वारे, मेरे उस्ताद ने मैनू किया साल सराय यो जिया सच्चा ते सुचा लाल दुनिया से, पर जे तेरे पाग जागन यो जे लाल दे तेनू दर्शन हो जान, ओदा मुल पा के अपमान न करी, एक सौ एक रुपया दर्शन भेटा रख, यह तो नहीं भेट। मरदाना बड़ा खुश, बाबा तू भी तन है तेरी दात भी तन, भेट एक सौ एक रुपये पर कौन पिया करता है। साल सराय जी ने परख लिया लाल लाल, पर जिस परख वाली अखा दे कोल आ गया तो मुल नहीं पै, पेट अदब हो रहे सत्कार हो। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने लिखे फारसी का।

कद्र लाले उगली आशिक न दानद हेच तस्कीम पे याकूत दानद चश्म गौहर बार बार। इसका तर्जमा किसी ने किया है पंजाबी लिखा है

0: ते कोई जारी अख पछा
1: जिस तरह लाल की कदर जबरी नू है इसे तरह यह सत्संग रूपी लाल अमृत कीर्तन की जड़ी कदर है और इसे प्यार गुरु दुनियावी गंदे गीत सुनने वाला भैड़िया थावां ते जान वाला इस वस्तु नू क्या समझे ये तो प्यारी सत्संग ओही जिन्हां दे अंदर गुरु का प्यार जो प्यार की बख्शिश गुरु ने तुहाडे उत्ते की गुरु नाल जुड़ के ते आप अमृत कीर्तन का रस्ता सालसराय ने कहा जी अलै दसो खा तुहानू ये दात कित्थों मिली मरदाने ने कहा यह दात मेरे मालिक की देन तुहाडा मालिक कौन है मरदाने ने कहा जो दुनिया का महल दुनिया उस दाते का नाम की है मरदाने ने कहा सारी स्थिति उतारन वाला कलयुगी जीवों के उधार करने वाला मेरा दाता धन गुरु नानक तुसी भी आखो
2: धन गुरु नानक
1: कोई रखना खाली नहीं प्यार नाल सारे जपो धन गुरु नानक गुरु नानक का नाम सुनिया मनहोठ साल सराय लाल मरदाना लाल ते 100 रुपए की थैली लैके पहुंच गया किथे मेरे धन गुरु नानक पातशाह जोता जगा रहे साहबां दे अगे जाके रख ते मत्था टेक के मरदाना कहन लगा महाराज आ लो अपना तिलसम कोई तो तुहाडे लाल दा मुल एक मूली पिया पाउंदा कोई पा मठियाई ते कोई 100 रुपया दर्शन भेट हजूर मुस्कुरा कहन लगे मरदानिया कोई समझ आई नहीं पाती मरदाने ने हथ ऐ मेरे साई दुनिया नु सोझी पाण वाले हा अज मैं गरीब नु भी सोझी मैं डूब नु भी सोझी हजूर कहन लगी मरदानिया की है महाराज आप कृपा करो तो मेरे धन गुरु नानक साहब पातशाह कह लगी मरदानिया ए कीर्तन का हीरा है आ खुशी ए कीर्तन का हीरा इस अरैन की तरह मुल पाते हलवाई की तरह मुल पाते मरदानिया जी ने कीर्तन का मुल पा दिता है उन्हें कीर्तन को समझे जिहड़े प्यार वाले हैं साल सराय वर्गे वो फिर कीर्तन की भेट कर दे भेट परवान चाहे लक करे चाहे तक जिहड़ा मुड़ पाता है या मुड़ पवाता है वह पुरते प्रधानी मेरे सिख जिहड़े हैं वो बाणी का मुल नहीं पाते भेट कर दे उन्हां दी भेटा गुरु नानक के दर से मालिक के दर से प्रवान हो जाए क्योंकि कीर्तन जिहड़ा है एदा मुल कीर्तन की है अजूर बाणी प्रभाव

से पग जल तर गया, जिन्हें तो है ध्यायो उन्हें पूर्ण प्रताप पायो, जो सेवे सतमुरार से पग जल

खो चुके हैं। उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट देके सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं, आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे हैं, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण कीती है जिथे वो आखदे हन असी मंजिल दे करीब तक ही जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए। पंक्ति सुनने वाली है, कहते हैं साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहते यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों उसकी मंजिल नालों उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रु नू ए नहीं पता कि वह जा किधर नू रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मुतलक कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानू यह पता नहीं तुसी किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो, बस ए आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे ते कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो। जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं। महाराज जी अपनी बाणी की पंक्ति आख दें, कहते हैं

संसार धीरे मंगा ससा गुणा सुखरे संसार चोरा यारा दुपरारा खराब विकार एक उन्दा खाए तले था उतना विकाए कार जल थल जिया पूरिया लो आया कार ओए जाके सो तू है जाने।

आओ बैठ सुल्तान। सदा ने क्या महाराज सुल्तान बादशाह को कह दिया अजू सैन के मराने या हो रहा पेड़ के एनु बादशाह ही दे क्या मत है हाथियों के सैन लगा तो अपनी जुबान मेरे सदगुरु तेरे को पूछने वास्ते चिंता नहीं कर रहा पर कारपुटी मार दी की हमें दीजिए आप बादशाह भी हो घर वापस जाना सवेरे फिर तेरे दर्शन हजू कह लगे ऐसा बकरियां लेके घर आया कुरड़ी मां बिल्कुल भी थी दाता जी मां तुम तो अब मेरी लाके आए आपके कह लगा मां ये सच कुछ नहीं है ना तो आज का अनुवाद से चिड़ती भी ये मेरे खेलदा रही है फिर भी मां अब तो मैं वो दाता मिले जिनके दर्शन चीतना मेरे सर्वनियों को कभी हो सकती है माई मेरे मन को सुखी

बड़ी मिठी है। ते किसे किसे ने अखा नाल वेखी है प्रभु दे दर दा, प्रभु दे घर दा दर्शन किसे किसे ने अखा नाल कीता। ए मता सानू भरम रह जा भी असी रोजाना दर्शन करदे आ रब दे दर दे, अंदरूनी तौर ते रब दे दर्शन नहीं होए। सतगुरु गरीब नवाज साहब सचे पातशाह महाराज फरमान करदे ने भाई जदों उस दे दर दे दर्शन हो गए ना ते जेड़े महलां दी प्राप्ति करन वास्ते असी भजे फिरने ना सारी उम्र प्राप्त नहीं हो सके, ओ महल प्राप्त हो जाएंगे। ओ बड़े उच्चे ने ते ओ प्रभु दे दर दे विचों प्राप्त हुंदे ने, जदों प्रभु दे दर दा दर्शन मिल जांदा ना उदों फिर सुखां दे महल उसरने शुरू हो जांदे। सुख महल जाके ऊच द्वारे ते उथे वसदे पता कौन ने, संसारी जीव नहीं वसदे, मात पिता भैन भाई सज्जन मित्र कोई नहीं वसदा उथे, उथे वसदे ने तामा वासा भगत प्यारे, उथे भगतां दा वासा है। ओ सुखां दे महल दे अंदर भगतां दा वासा हुंदा, भगत उस दे दर दे संतरी ने खड़े हुए ने, उथे फिर हमेशा गीत नाद खड़कते रहते, अखाड़े हुंदे रहते। रब दे दर दे जिन्ने जिन्ने गन गंधर्व किन्नर पिशाच ने ना ऐसा

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूढ़ नहीं पायो, भिन्न भिन्न सब।

0: तब गुरु
1: बिजे पूर्व देवना जिस दी वस्त तिसे घर आवे बैठा सोढ़ी पातशाह
0: रामदास सतगुरु
1: जं को मुन ध्यान धरे फिरत सकल जग कभु को पावे आत्म प्रकाश को वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावे जं को शिव मन गहना तजात कबिलास को जं को जोगी जती सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिर उदास को सो तिन सतगुर सुख भाए।

गुरु साजी से निवाजी साहब जी हो राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न दी सेवा कर रहे हैं। श्री राग दा जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों श्री ऋषभ कहने हैं, सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसको ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है, और पंचम जिसनों पा कहने हैं, सारे गामा पा पंचमा सुर है वो इसका वजीर सुर है। इन्हों दोनों सुरां दे समेल दे नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ, जिस तरह

जो पड़ताल है, जिसन पड़ताल गुरु माता अंदर किया जाता है, उसका भाव है कि ताल नू बदल के गायन करना। जिवें हुण पहला जो रहाओ है वो ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इस नू असीं दीप चंदी कहने हैं, 14 सुर मात्र दा ताल है, ताल बदल गया है, इस नू पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लो।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदर दानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। यह ग्रंथ जो है सर्वलो प्रकाश की बाणी है। धागड़ दी धर्म धृग तांग दागड़ दी दिम दिरना, बागड़ दी ब्रिकते बांग तागड़ दी तोम तोम तोम तिरना, दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कोम किरना। यह साहब जी ने तराना गाया। तो इसका मतलब है दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कोम किरना। यह अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने, सरगमा लगानिया और ताना लगानिया। कुम किरना नाल दे ताल, दागड़ दी दे ताल के तुसी ताना लगाते हुए ताल का ना ख्याल भुल जाना। ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना। बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना, इसनू कीर्तन कहिंदे। जे राग ते ताल कढ दिओ बाणी पढ़ी जाओ, वह कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है। राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ दी दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना, नाल पलटे लगाओ, सरगमा करो और ताना लगाओ। उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

0: देख है क्या गुण तेरे सार संभाली, शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है, कोट अपराधी दरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।

भाई बहुत मद जो बास बस मुकुरमा है जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर कटगी खोजो पाए बार पीते एक जानो एक गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा जी।

आरण मेद हथियार पौखला अगन तपता पांडा भाव अमृत दार घड़िए शब्द सच्ची टकसा जिनको नजर

नजर करे जिस अपनी ता नजरी सतगुरु पाया, नजर करे जिस अपनी ता नजरी सतगुरु पाया, ए जियो बहुते जन्म परमे आता सतगुरु शब्द सुनाया, सतगुरु जीवन दाता को नहीं सब सुनयो लोक सुभाया, सतगुरु मिली है सच पाया जिन विचों आप गवाया, जिन सचों सच बुझाया।

राग गौड़ी भी सोरठ भी विच दोवें ऋषभ दोवें मध्यम दोवें निषाद अते दोवें धैवत सुर लगते हैं। इस दे अवरोह विच गंधार सुर वर्जित है। इस दी जाति संपूर्ण षाड़व वादी पंचम संवादी षड़ज अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच अब मोको भय राजा राम सहाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।